बात है मित्रों, मरू मरू क्यों करना। बिल्कुल जिंदगी दित्ती है रब ने, सेहत वधिया, सब कुछ वधिया, ते मरू मरू क्यों करना। जिंदगी जियो खुल के, ते गलबात चल रही सी, बंदा उदास मन होवे ते किद्दां उन्नू वधिया खुश मिजाज बनाया जा सकता है, किद्दां उहदे मन नू होर भी दुरुस्त किया जा सकता है। ते कहिंदे आ गाने गुणे दे नाल भी, गाने सुन के भी हो सकता है। कहिंदे आ जे तुसीं वॉक कर सको ना नेचर दे विच, खास करके ते पार्क विच जाके नेचर दे विच वॉक करो, उहदे नाल भी तुहाडा जिहड़ा मन है उह भी बड़ा सही हुंदा, तुहाडी नींद पूरी होवे उहदे नाल भी। ते खास गल जिन्हां दे घर आ जिन्हां ने पैट रखे हुए आ, जिन्हां दे घर पैट ने, कहिंदे पैट रखे होण दे नाल बंदे दा मन बड़ा सही हो जांदा। बंदा घर कुत्ता रखिया होवे, बिल्ली रखी होवे, बंदा उहदे नाल खेडदा है, सौ गल्लां बातां इधर उधर करदा है, ते उहदे नाल भी बंदे दा मन बड़ा सही हो जांदा। एक थैरेपी दा ही काम करदे आ घर दे विच जदों पैट्स होण। ते होर बहुत सारियां चीज़ां ने, तुहाडा की कहना है। 905-673-3337-9056733337। एक ना बड़े ही शानदार मैं देख रहा सी सर्वे दे विच, ये चीज़ आई है, कहिंदे है बंदा ना उदास बैठा ते धक्के दे नाल ना उदा ही बस एक जाली समाइल नहीं होंदी, एक फेक समाइल, तुसी बैठे हो बस समाइल करनी है, तुहाडा वो हासा नहीं आ रहा, बस तुसी समाइल करनी है। कहिंदे हुंदा की है जिहड़ी जाली समाइल भी हुंदी है ना, उहदे नाल तुहाडा मूड बेहतर हो जांदा। आराम नाल बैठे हो, बस इदां ही समाइल वाला मूँह बना के देखो, ते ओह तुहाडे चेहरे ते तुहानूं उहदा अहसास हुंदा, तुहानूं पता हुंदा भी हाँ यार मैं इदां ही फेक समाइल कीती है, पर इहदे नाल मेरे मूँह दे जिहड़े मसल्स है इहनां दे विच फर्क पै गया। करके देखियो, मैनूं पता कई बंदे हुण इस टाइम फेक समाइल कर रहे होणे ने सुण के, इदां इदां करके शीशे वल देख के, पर फर्क पैंदा। ये वाकई ही ट्राई किया, मैं भी ट्राई कर रहा सी, ते इहदे नाल फर्क जरूर पैंदा।

वाचिनीं भजामि विंध्यवासिनीं विशिष्ट सृष्टि कारिणीं विशाल रूपधारिणीं महोदरां विशालिनीं भजामि विंध्यवासिनीं पुरंदरादि संगुरादि वंशखंडिनीं विशुद्ध बुद्धि कारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं भजामि

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम या अली मदर। कैसे हो आप? आपका हफ्ता कैसा रहा? आपके काम कैसे चल रहे हैं? आप कैसे महसूस कर रहे हो? हमारे श्रोता के ऊपर उस ऊपर वाले की दया कृपा बनी रहे, खुशहाल रहे। बस इन लहरों के जरिए ही हम आपको ये भगवान का नाम भेजते हैं, तो यही आपको मौका मिलता है थोड़ा ऊपर वाले का नाम सुनने का और इंजॉय करने का। उम्मीद रखती हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अब आइए प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब फादर्स डे आने वाला है, आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया टीवी, किचन की गैजेट्स लेटेस्ट चाहिए, आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू चाहिए, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए मिलेगी। आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्क में है। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लें, उनके वेबसाइट पे जाइए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com, अपने ऑर्डर बुक फादर्स डे से पहले पहले ही कर लीजिए। 905-799-0045-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल सकते हैं, कर सकते हैं। अब आजकल शादियों का सीजन है, मंगनियों का सीजन है, शादी, एनिवर्सरी, बर्थडे पे आपको सोने के गहने चाहिए, सोने की बार चाहिए, जहाँ फिर आपने डायमंड्स अप टू 70% ऑफ लेने हैं, तो अल मदीना ज्वेलर्स पे जाइए। अल मदीना ज्वेलर्स आपके लिए एयरपोर्ट रोड पे मॉल्टन में मौजूद है। अल मदीना ज्वेलर्स .com पे जाइए और अपने ऑर्डर बुक करिए। 905-673-0100-9056-73-0100 पे आप एल मदीना ज्वेलर्स को कॉल कर सकते हैं। आपने किचन और वाटरलू ग्वाल्क में घर खरीदना बेचना है तो आप नसीब थिंड को कॉल कीजिएगा। 519-546-1260-5569-546-1260 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं रियल एस्टेट की दुनिया के बारे में। अब आपने लड्डू, जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ बढ़िया बढ़िया लेनी है, और आपको मिलेगी समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे, उनकी बहुत सारी लोकेशंस हैं, तीन लोकेशंस हैं। और फिर आपके लिए उनका जो सारा आपको खाना मिलेगा, मिठाइयाँ मिलेगी, वो एकदम फ्रेश मिलेगी। क्या है कि उनकी टर्नओवर जो है ना, वो आपको उनकी बहुत है, क्योंकि वहाँ आप जाओगे कभी भी तो उनके बहुत बड़ी लाइन लगी रहती है खाने की, तो आपको एकदम फ्रेश मिलेगा जो भी मिलेगा।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा डॉलर 475 पर पाउंड पर शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने साला दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हम 3 लोकेशन पर सर्व करते ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड इटोबिको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर आपका स्वागत है घर संसार में। अब आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है, अपने घर खरीद लिया, फिर आप मूव भी करेंगे। समर में बहुत मूविंग होती है, लोग बड़े घर बदलते हैं, तो आपने भी मूव करना है तो आप HK मूवर्स को कॉल कीजिए। बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, कनाडा भर में मूव करने में आपकी मदद करते हैं और आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आप आज ही ट्रक अपना बुक कर लीजिए 416-524-8004-1652-46704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो जब पहली बारी मिलते हैं और फिर सारे बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो फिर बहुत सालों बाद ये एक चीज हो जाती है कि दिलना चाहिए कि क्या वादे हुए थे, तो क्या क्या कुछ कहा गया था, कितने ख्वाब दिखाए गए थे। तो उसके लिए निशी एंड राज रफी और आशा जी का गाया हुआ जी स्कूल के थे तो बंधन 1963 में।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। मास्टर कलेजन डीपू अब आपके लिए लंदन में सेवाएं दे रहे हैं। अगर आपको किसी तरह का भी कलेजन का काम करवाना है, लंदन आसपास के इलाके में रहते हो, तो आप मास्टर कलेजन डीपू पे जाइए और जानकारी के लिए आप कॉल कर लीजिए 647-225-1155, 6472251156। अब मास्टर कलेजन डिपो, पहले वो ब्रैम्पटन में थे, फिर हमिल्टन में, अब लंदन में है उनकी लोकेशन। तो आप उनसे वहाँ लंदन आसपास के इलाके में रहते हो, आपको कलेजन का काम करवाना हो तो मास्टर कलेजन डिपो पे जाइएगा। अब आपने अगर फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया किचन की गैजेट चाहिए, लेटेस्ट टीवी का मॉडल चाहिए, और आउटडोर फर्नीचर चाहिए, और डिजिटल वाले बारबेक्यू चाहिए आपको लेटेस्ट, तो सारा सामान आपको, ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए गोल्फ में है। तो आप ने फादर्स डे के लिए गिफ्ट खरीदनी है तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइएगा। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बहुत बढ़िया डील देंगे, बढ़िया क्वालिटी देंगे। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पे जाइए अपने ऑर्डर बुक करने के लिए। 905-799-0045 पर कॉल कर लो। 9057990045, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप अगर ट्रक रिपेयर करवानी है, किसी तरह का भी आपको काम करवाना है, बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर आपके लिए 1715 सिसमन रोड मिसिसागा में मौजूद है। आप उनको कॉल कर लो 905-625-0055, 9056250055। टोरंटो आसपास के इलाके में घर खरीदना बेचना है तो आप कॉल कर लीजिएगा खुशवंत सिंह बैंस, 416-677-1313। तो अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गाना चुना है दिलीप कुमार। अभी दिलीप कुमार जी के जो गाने होते थे सभी चुलबुले बड़े होते थे, तो ये भी एक ऐसा गाना। शिकारी फिल्म आई थी 1960। एक्चुअली असल में ना इसमें सुजीत है, मेरे से गलती हो गई, सुजीत इसमें हीरो के रोल में है। देखो तो उनका तो कभी सुजीत के बहुत कम मूवीज आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे आप वो हीरो के, इस फिल्म में हीरो है। आप जरूर देखिएगा शिकारी फिल्म।

0: आप किसते रहते हैं ठीक, तो अगर आपको प्रोग्राम सा रहा है ताई कि आपको है और जब छोड़ कर क्या है तो आज नहीं है तो क्या है सुन भैया खूब जी आना होगा और साधना
1: मानों से कोई शोर।

0: जी हाँ, तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। हफ्ते की जो भी न्यूज़ होती है, जो भी इंसिडेंट्स होती हैं हमारे आसपास, जरूर कुछ ना कुछ होता है। जब तक हमारा प्रोग्राम आता है तो आप वो सब सुन चुके होते हो, तो फिर पुरानी खबरों को दोहराना वो फिर न्यूज़ नहीं रहती है ना। तो इसलिए मेरा बस काम होता है आपका 100% मनोरंजन। ठीक है जी, अब मैं यहीं पर लेती हूँ। हैव ए सेफ वीकेंड, वट एवर यू डू इंजॉय योर सेल्फ, और अपना भी इंजॉय करो, दूसरों का भी इंजॉय करना करो। और कुछ जब बात कुछ कहते हो तो देन थोड़ा सा सोच करके कहिएगा, सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट मत कीजिएगा। और जब फिर आपके लिए भी बाद में जब आप अपने आप को फेस करते हो तो महसूस होता है कि हाय, मैंने उसका आज दिल दुखा दिया, क्यों किया। बस इससे बचिए और अपने आप को भी खुश रखिए और दूसरों का भी ध्यान रखिएगा। नानक राम चढ़दी कला, तेरे पाणे सुहाता भला। हैव ए वंडरफुल झटका आपके हिंदी के जरूर।
1: Thank you.

से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

हाँ जी, जरा एक वेबसाइट नोट करो, afcgrocery.com। ये है जी एशियन फूड सेंटर की ब्रांड न्यू वेबसाइट, जिथों तुसी इंडो कैनेडियन ग्रोसरी, मिठाइयां, ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, इंडिया वाले भांडे, सजावट का समान, सारा कुछ जो स्टोर ते जाके

घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की यहाँ ये स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA. चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर. विजिट इन स्टोर फॉर मच मोर, 9057900.

0: License number 10394.
1: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
2: HK Movers,
1: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
2: For service with a smile, give us a call.
1: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
2: 416-524-6704.
1: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
3: Long distance moving specialist,
1: HK Movers.
4: HK Movers.
5: Oh, haan, अब बड़ी हाईवे ते डोर भरी होई खड़ी है की गल
6: एक्सीडेंट हो गया कार दा टो ट्रक है नू फोन कर लगी हां
5: ओ टो ट्रक छड मैं सीधा करदा स्काईडोम ऑटो एंड बॉडी सेंटर वाले नू नाले मैं ट्रक दा बॉडी वर्क भी कराउन जाना उते
6: आहो मैं सुनया स्काईडोम वाले सारी इंश्योरेंस कंपनियां ने डील कर दिया नाल ही हुन मेरी कार दा मिशन टेस्ट कर दो ने नवे टायर पवा दियो उधरो ब्यूटी पार्लर जाना उधरो कार दा पंगा आ छेदी करो स्काईडोम वाले नू फोन करो 905-876-9878
5: भाई घर वाली ब्यूटी पार्लर तो निकली होवे ते कार स्काईडोम
7: जानकारियां ते मनोरंजन भरपूर प्रोग्राम पंजाबी रंग दे विच अपने बिजनेस नू प्रमोट करन लई तुसी अज ही संपर्क कर सकते हो चमकौर सिंह नाल 416-662-1313 416-662-1313

यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 LED

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम या अली मदर। कैसे हो आप? आपका हफ्ता कैसा रहा? आपके काम कैसे चल रहे हैं? आप कैसे महसूस कर रहे हो? हमारे श्रोता के ऊपर उस ऊपर वाले की दया कृपा बनी रहे, खुशहाल रहे। बस इन लहरों के जरिए ही हम आपको ये भगवान का नाम भेजते हैं, तो यही आपको मौका मिलता है थोड़ा ऊपर वाले का नाम सुनने का और इंजॉय करने का। उम्मीद रखती हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अब आइए प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब फादर्स डे आने वाला है, आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया टीवी, किचन की गैजेट्स, लेटेस्ट चाहिए, आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू चाहिए, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए मिलेगी। आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लें, उनके वेबसाइट पे जाइए, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com। अपने ऑर्डर बुक फादर्स डे से पहले पहले ही कर लीजिए। 905-799-00-4549-0579-00-45 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल सकते हैं, कर सकते हैं। अब आजकल शादियों का सीजन है, मंगनियों का सीजन है, शादी, एनिवर्सरी, बर्थडे पे आपको सोने के गहने चाहिए, सोने की बार चाहिए, जहाँ फिर आपने डायमंड्स अप टू 70% ऑफ लेने हैं, तो अलमदीना ज्वेलर्स पे जाइए। अलमदीना ज्वेलर्स आपके लिए एयरपोर्ट रोड पे मॉल्टन में मौजूद हैं। अलमदीना ज्वेलर्स .com पे जाइए और अपने ऑर्डर बुक करिए। 905-673-01-00-9056-73-01-00 पे आप अलमदीना ज्वेलर्स को कॉल कर सकते हैं। आपने किचन और वाटरलू ग्वाल्फ में घर खरीदना बेचना है तो आप नसीब थिंड को कॉल कीजिएगा। 519-546-1260-519 546-1260 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं रियल एस्टेट की दुनिया के बारे में। अब आपने लड्डू, जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ बढ़िया बढ़िया लेनी है और आपको मिलेगी समोसा की बहुत सारी लोकेशंस हैं, तीन लोकेशंस हैं। और फिर आपके लिए उनका जो सारा आपको खाना मिलेगा, मिठाइयाँ मिलेगी, वो एकदम फ्रेश मिलेगी। क्या है कि उनकी टर्नओवर जो है ना, वो आपको उनकी बहुत है, क्योंकि वहाँ आप जाओगे कभी भी तो उनके बहुत बड़ी लाइन लगी रहती है खाने की, तो आपको एकदम फ्रेश मिलेगा जो भी मिलेगा।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਨ ਪਿਸਤਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਟਨ, 1850 ਐਲਬਨ ਰੋਡ, ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1165।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर आपका स्वागत है घर संसार में। अब आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है, आपने घर खरीद लिया, फिर आप मूव भी करेंगे। समर में बहुत मूविंग होती है, लोग बड़े घर बदलते हैं, तो आपने भी मूव करना है, तो आप HK मूवर्स को कॉल कीजिए। बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, कनाडा भर में मूव करने में आपकी मदद करते हैं और आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आप आज ही ट्रक अपना बुक कर लीजिए 416-524-8004-1652-46704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो जब पहली बारी मिलते हैं और फिर सारे बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो फिर बहुत सालों बाद ये एक चीज हो जाती है कि दिल चाहिए कि क्या वादे हुए थे, तो क्या क्या कुछ कहा गया था, कितने ख्वाब दिखाए गए थे। तो उसके लिए निशि एंड राज रफी और आशा जी का गाया हुआ जगह स्कूल के थे, तो बंधन 1963 में।
2: Mm-hmm.

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। मास्टर कलेजन डीपू अब आपके लिए लंदन में सेवाएं दे रहे हैं। अगर आपको किसी तरह का भी कलेजन का काम करवाना है, लंदन आसपास के इलाके में रहते हो, तो आप मास्टर कलेजन डीपू पे जाइए और जानकारी के लिए आप कॉल कर लीजिए 647-225-1155, 6472251156। अब मास्टर कलेजन डिपो, पहले वो ब्रैम्पटन में थे, फिर मिल्टन में, अब लंदन में है उनकी लोकेशन। तो आप उनसे वहाँ लंदन आसपास के इलाके में रहते हो, आपको कलेजन का काम करवाना हो तो मास्टर कलेजन डिपो पे जाइएगा। अब आपने अगर फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया किचन की गैजेट चाहिए, लेटेस्ट टीवी का मॉडल चाहिए और आउटडोर फर्नीचर चाहिए और डिजिटल वाले बारबेक्यू चाहिए आपको लेटेस्ट, तो सारा सामान आपको, ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए गोल्फ में है। तो आप ने फादर्स डे के लिए गिफ्ट खरीदनी है तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइएगा। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बहुत बढ़िया डील देंगे, बढ़िया क्वालिटी देंगे। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पे जाइए अपने ऑर्डर बुक करने के लिए। 905-799-0045 पर कॉल कर लो, 9057990045, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप अगर ट्रक रिपेयर करवानी है, किसी तरह का भी आपको काम करवाना है, बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर आपके लिए 1715 सिसमन रोड मिसिसागा में मौजूद है। आप उनको कॉल कर लो 905-625-0055, 9056250055। टोरंटो आसपास के इलाके में घर खरीदना बेचना है तो आप कॉल कर लीजिएगा खुशवंत सिंह बैंस, 416-677-1313। तो अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गाना चुना है दिलीप कुमार। अभी दिलीप कुमार जी के जो गाने होते थे सभी चुलबुले बड़े होते थे, तो ये भी एक ऐसा गीत है। शिकारी फिल्म आई थी 1960 में। एक्चुअली असल में ना इसमें सुजीत है, मेरे से गलती हो गई, सुजीत इसमें हीरो के रोल में है। देखो तो उनका तो कभी सुजीत के बहुत कम मूवीज आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे आप वो हीरो के, इस फिल्म में हीरो है। आप जरूर देखिएगा शिकारी फिल्म।

0: किस को आप किस तरह से ये ठीक तो अगर आपको प्रोग्राम सा रहा है ताई कि आप वो है और ये है जो है और जो छूट कर क्या ता है को कर दो आज नहीं है तो क्या है सो भैया इस खूब जी बिल्कुल ये आप ना रहा होगा सो मिल जाता और साधना
1: हाय मेरा दिल मीठा नैनो हन नैनो

0: जी हाँ, तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। हफ्ते की जो भी न्यूज़ होती है, जो भी इंसिडेंट्स होती हैं हमारे आसपास, जरूर कुछ ना कुछ होता है। जब तक हमारा प्रोग्राम आता है तो आप वो सब सुन चुके होते हो, तो फिर पुरानी खबरों को दोहराना वो फिर न्यूज़ नहीं रहती है ना। तो इसलिए मेरा बस काम होता है आपका 100% मनोरंजन। ठीक है जी, अब मैं यहीं पर लेती हूँ। हैव ए सेफ वीकेंड, वट एवर यू डू, इंजॉय योर सेल्फ, और अपना भी इंजॉय करो, दूसरों का भी इंजॉय करना करो। और कुछ जब बात कुछ कहते हो तो देन थोड़ा सा सोच करके कहिएगा, सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट मत कीजिएगा। और जब फिर आपके लिए भी बाद में जब आप अपने आप को फेस करते हो तो महसूस होता है कि हाय, मैंने उसका आज दिल दुखा दिया, क्यों किया। बस इससे बचिए और अपने आप को भी खुश रखिए और दूसरों का भी ध्यान रखिएगा। नानक राम चढ़दी कला, तेरे पाने सुहाता पला। हैव ए वंडरफुल का आपके हिंदी के जरूर।
1: हाँ।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

के संगत नानक रहदा क्यों कर मूड़ा पावा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोही महला पहला कौन तराजे कवन तुला तेरा कवन सराफ बुलावा कौन गुरु का पह देखिया लेवा

सजदे नहीं मैं हक लिखूंगा, कहानी नहीं मैं सच लिखूंगा, सजदे नहीं मैं हक लिखूंगा, लिखूंगा अपनियां हारां नूं, लिखूंगा अपनियां हारां नूं, जित्तां अपनियां घट लिखूंगा, हौमें मारन दी कोशिश है मेरी, हौमें मारन दी कोशिश है मेरी, बदनामी अपनी झट लिखूंगा, बदनामी अपनी झट लिखूंगा, ते नहीं लिखूंगा किसे बारे कुछ भी, ते नहीं लिखूंगा किसे बारे कुछ भी, जिथे भी नाम आऊ उथे बस रब लिखूंगा, बस रब लिखूंगा।

0: With your friends, not having a plan for a safe ride home can leave you in a bad spot. You can end up riding in an ambulance, a police car, or a hearse. These unplanned modes of transportation are costly alternatives and do not take you home. Your plan for a safe ride home can include a taxi, a designated driver, or public transit. Drink responsibly, choose your ride. Thanks from Arrive Alive, Drive Sober, Desjardins Insurance, and the Beer Store.
1: हीट वेव आ गई
2: की गल एनी जल्दी
1: हां जी ते पता है इसका की मतलब
2: सनस्क्रीन हाइड्रेशन एनका ते सेविंग्स भी क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99 च ओहो उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने
3: ओ भाई एता गर्मा गर्म डील है
2: कोई मेंबरशिप फी नहीं और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा होलसेल क्लब.ca ते जाओ
4: होलसेल क्लब होल लॉट ऑफ वैल्यू

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection kalon to chutkara. Bina vyaj nikiyan nikiyan kishtan. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862। जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6947400188 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।
3: नजरिया प्रोग्राम नाल जुड़ चुके दोस्तों का हार्दिक निघा स्वागत। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। तुसी जिहड़े दोस्त हुणे जुड़े ने जी, उन्होंने निघी जी आखदे हां, क्योंकि अपना साथ हर एतवार वाले दिन 12 बजे रामस पंजाबी वीकेंड शो के नाल बन जाता है। 12 तो 1 रामस पंजाबी ते 1 तो 2 सुनदे हो प्रोग्राम नजरिया। मैं थोड़ा होस्ट मनजीत सिंह गिल। कोई भी गलबात तुसीं प्रोग्राम तो बाद विच 2 बजे तो बाद विच मेरे नाल करनी हुंदी है, तो फिर 416-669-1379 ते कर सकते होंगे हो। लेकिन स्टूडियो कॉल करने वास्ते टैलीफोन नंबर होंगे ने 416-233-7368 ते जां फिर 8297 416-233-7368 जां 8297 स्टूडियो दियां टैलीफोन इन्हां लाइन से तुसीं कॉल करके कोई भी गलबात अपनी शेयर करनी होवे, कोई जानकारी सांझी करनी चाहते हो तो कॉल की जा सकती होंगी है। अदरवाइज तुसीं मैनू सेफली अगर टैक्सट मैसेज भेजना हो फिर 416-669-1379 ते भेज सकते हो 416-669-1379। इस वेले आप जुड़ चुके हैं जी प्रोग्राम नज़रिया दे नाल, और मैं थोड़ा होस्ट मनजीत सिंह गिल।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.

0: ਹੀਟ ਵੇਵ ਆ ਗਈ।
1: ਕੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ?
0: ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?
1: ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਐਨਕਾ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵੀ।
0: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99। ओहो, उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
1: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
0: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
3: दिस इज AM 530 CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: चाहे वो हेल्थ केयर है, एडुकेशन है, या फिर अपना देश के बाहर फॉरन एड देते हैं अपना बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, थोड़ा सा पैसा एडुकेशन में भी लगाते हैं जैसे रिफ्यूजीज पे लगाते हैं, राइट? तो कोई कैश नहीं है इसके अंदर।
1: 437, 264, 3175 ते कितने टाइम चाहे पेमेंट आ जाएगी?
0: अगर आप आज एनरोल करते हैं विद इन अ वीक आपको लिंक आता है, अपना खुद बैंक सेटअप करते हैं अपने घर से, और फिर आपके पास 30 to 90 days में गवर्नमेंट फंडिंग डाल देती है आपके अकाउंट में, पहली किस्त, दूसरी किस्त गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डायरेक्ट डालती है 5 महीने के बाद। और कोई कैच नहीं है इसमें, सारा ट्रांसपेरेंट ऑनेस्टी से काम है। NOA, मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, क्यों? क्योंकि फैमिली साइज ज्यादा है, और जितनी इनकम कम है नोटिस ऑफ असेसमेंट में आपकी 2024 के, उतना ज्यादा बेनिफिट है आपको कम इनकम, क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, बैंक से फंडिंग नहीं ले रहे आप यहाँ पे। तो कंफ्यूजन ना रखें आप अपने अंदर, जितना आपकी इनकम कम है, जितना फैमिली साइज ज्यादा है, उसी ज्यादा फंडिंग आपके गवर्नमेंट डायरेक्ट सीधे आती है, कोई कैच नहीं है इसके अंदर।
1: और बहुत सारे क्वेश्चन है, अगले लिंक के गल बात कर दे, कोई नंबर साझा कर दो।
0: नंबर जी 437-264-3175, 437-264-3175। साढ़ी फीस काम होने तो बाद 199 से $499, नो परसेंटेज, नो कमीशन, नो कैच, आपने अपनी ईमानदारी से देनी है, क्योंकि फंडिंग किसके अकाउंट में आ रही है? आपके में, मेरे में नहीं आ रही। 437-264-3175 नंबर एक बार और, 437-264-3175,
1: 437-264-3175। दोस्तों क्योंकि आने वाले टाइम दे विच ग्रांट देनी गवर्नमेंट ने बंद कर देनी, कल्ला लोन रह जूगा, सो जे तुसी इस दे विच इंटरस्टड हो, होर जानकारी लेना चाहुंदे हो, ओवर द कॉल ही इन्होंने दस देना तुसी एलिजिबल हो, किन्ने पैसे लिए एलिजिबल हो, राइट नाउ कॉल करो 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।